राम हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे राम हरे कृष्णा